0: मुन्ना को बाकी है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में क्या दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरा को वैंडना हिंका में ने अफन थी कंको लन्ना
1: थी को तुम हाउ दा है रंगल लाए थी हैं मुन्ना एक ही आह हाल बला फे मुन्ना रकां कंको देन्ना है थी मुन्ना वरहा उपावे

0: मेहमान। अदगराज जगे मियाँ दुगे प्रोग्राम के मेहमान की वर खास बेफड़ेंगे तो हम अलगन में एहुन थेरी नंग आ अडक आदि बेलुन थेरी नंग आ मूणक नुआने दिवे बह अदबियात के दायरा इन दिवे गव मा गीत गुण खिदमत तक को देवा फा बेफड़े आदि मिहार कुरबम गें दवा बेफड़े खास को लेमवेर कम के दुनिया का वर मशहूर बेफड़ेंगे तो दिवे बह तारीख खिदमत कुरा गव मी मरुकजुंग मी लेमवेर कम के दातुर फट्टवैंग आदि मिहार सम दुर्ग दिमी हुण बेफड़ें अलगण मेंगे रेडियो के प्रोग्राम तक मालूम देव्वा आदि अलगण मेंगे एहुन तेरिन्नंग लेम्बरिकम के दायराया ए फन्ना हुनरा गुड़े गीना गुड़ मालूम तक देव्वा बेफड़े मेगे तुरु दिवे राज्य के कौमी यूनिवर्सिटी हिंगवा दिवे बहुगे डिग्री के सोल कोहेग कियवा देव्वी अलगण गे मुदरसे वर बोड मरहबाएंगे तो
1: शुक्रिया
0: अद मुदरस्ती होद्देवी मत्वेर शरफट्ट कालगुन में अदुगराज जगे टीम के फरातुं अरवा माबोन येंगे तो
1: अरवा शुक्रिया
0: मुदु कुलागे लिली मला मडु दमु कुलागे कानेशन मलुगे माबोन येंग अगन में टीम के फरातु मेरु
1: शुक्रिया अरवन मुदरिस के सोना गुलदस्ता के अवर रीतिले में
0: एं तो एं में मैं एले मुंग अगन में फशा मातो ಗುಲ್ದಸ್ತಾಗೆ ಬೋಡಕ್ ಅಣೆ ಎಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಸೋಯ ರೀತಿ ಲೆಮಕಿ ಕೊಬಾತು
1: ಎಮ್ಮೆ ರೀತಿ ಬಯಕೇತ ಹೇಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಗೆ ಮೆಸೇಜ್ಗ ಮುದರಿಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೊದಲು ತಿಮಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಕಮೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಎಹಿಂ ಮಿಹಕು ಇಸ್ಕುರಾಣಮ ನುಕುಮದಾನೆ ನುಬಾಯ ನತೀಜ ಎಹಿಮಿಮ ಎಯಿ ಪ್ರಥಮ ಏಕಾಂಕಮಗೆ ಹಾಯರಾಂಕಮುಗ ಹೇಳಿ ಫಟ್ಟಾಫಣ್ಣಿ ಮಿವಿ ಕೊಂಫದ ಅಜಾಯಬಕ ಮಲುಗೆ ಫಿನಿಫೆ ಮಿಗುಲ್ದಸ್ತ ನುವಿ ಹಿಂದು ತಿಯ ಎದುನುಗೊತ್ತ ಮಾಫ್ ಕೊರೆ ಮಗೆ ದತ್ತ ಅರ್ಪದೇನೆ
0: ಅದೇ ನಮಸ್ ಅರುಣ್ ಮೆಂಗ್ ಮೀ ಬ ಫಸಾಣಿ ಮುಳಿನ್ ತಫಾತು ಮಕುಂಗೇತ
1: ಅದೇ

0: हंगार हंगार दो मिंदुन कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मिंदमो बार गड़ तेरी हूँ
1: हंगार
2: हम एकने दिवे ही राज्य के अड़ूं
3: वगुता हालताय को लोब इम्तिहान कुरेवे मिदुनिये का दारिफुरु देखे इम्तिहाय लोबवा बप्पे दुनिये आबाद कुरुं हुट्टाली ए दरिफुलुगे दुनिये फुरिहम कोत्तिनु मट्टका
4: रिपीट
2: हमेरे दिहगट तेरी हूँ आदि हुकुर दुहगिरे मेंदम बार गट तेरी हूँ एंग आसतर से 40 नुए किलो हर्ट्स मीडियम वेव आदि 8 नुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
4: दिवे राज से गेड
5: कोम्मे उमुरका
6: कोम्मे फांतियाका
5: कोम्मे गिंतियाका दिवे राज से गे अड़ू एंग आसतर से 40 नुए किलो हर्ट्स मीडियम वेव
6: अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड

0: मुन्ना कोबा की है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वडा में क्या दक काफुं अता
2: मुन्ना थी है बरको वेंडा हिं कमेन ने अफन थी कं कोलन ना
1: तिको दुं हाउ दा है रंगल ले तिहें मुन्ना एक ही आ हाल बला फे मुन्ना सकां कं को देन ना है दी मुन्ना वरा उपावे

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी एकार गड़ फनर है रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकने दिवे राज्य के अड़ूं कामयाबी फारवेरी का वाम बेनुं ता कामयाबी फारवेरिंग आतुं इरुशाद होदं बेनुं ता व्यवहार फुराकुरम बेनुं ता
1: वुनदं कार
3: कम में होनेर दोए गे हिंदुनु नुआगट फनरेगा रिपीट होनेर दोए गे हावीरो हातरुगट फनरेगा आदि आदित्त दोए गे हावीरो हातरुगट फनरेगा
1: इंगा सतर्स देख साढ़े स्नो एक किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डे नो एमएगार्ड्स एफएम बैंड
3: हाँ मैं कनी दिवे ही राज्य के आडू
4: रक्का को फोन फैसा इंसा कहते कुम्बाजीब वाने था
5: हज़्ज़ा दियो मट्ट का दक्का फोन फैसा इंसा का देख के नेता
4: आतुगों ना गहनाएं जखे तक्काने किहिने
6: तिहुरिया स्वागताय के जवाब ए प्रोग्राम को
7: जखाई
4: हो मधुगे हिंदुनो दिहे कट तिरी हूं रिपीट हो मधुगे रे दिहे जायरो आदि होनहिर दोगे मेंदुरो एके चायरो
2: इंगा सतरस्तिया का सारस नुए किलो हर्ट्स मीडियम वेव आदि अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड हमाय कनी दिवे राज्य गड़ो